0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर

0: पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ 20वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले कनाने स्त्री के जीवन पर चिंतन करते हुए विनम्रता एवं दृढ़ता के सद्गुणों को बढ़ाने का संदेश दिया।
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
0: कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में पोप लियो 14वें ने कुंवारी मरियम के स्वर्गोद ग्रहण महापर्व के दूसरे दिन अर्थात वर्ष के 20वें रविवार को विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने उस दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
0: कल हमने कुंवारी मरियम का अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के संग अटूट संबंध पर चिंतन किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी व्यक्ति के शरीर एवं आत्मा की एकता को नहीं तोड़ पाई, जो अनंत जीवन है। हर रविवार यीशु का अनुसरण करने वालों के लिए इसी परिपूर्णता की याद दिलाती है। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमें नए जीवन से पोषित करता है। संत पापा ने कहा, हम आज इसे कनाने स्त्री में पाते हैं, जो सुसमाचार पाठ की मुख्य पात्र हैं। यद्यपि वह चुनी हुई प्रजा में से नहीं थी और एक परदेशी भूमि में रहती थी, तथापि वह निरंतर यीशु से बात करने की चाह रखती थी। एक शिष्य की भांति वह उनका अनुसरण करती थी, मानो उसका पहले से उनके साथ एक संबंध रहा हो। शायद उनकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, फिर भी एक आश्चर्यजनक रूप में विश्वास उसके हृदय में जड़ जमा चुका था। वह अपने लिए किसी भी चीज की कामना नहीं करती है, लेकिन वह अपनी पीड़ित बेटी के लिए शांति की चाह रखती है। वह अपना विश्वास यीशु पर समर्पित करती है। वह उनमें मुक्तिदाता को पहचानती है, जो दाऊद के उत्तराधिकारी हैं। पोप ने आगे कहा कि सुसमाचार लेखक नारी के द्वारा सामना किए जाने वाले मुश्किलों को नहीं छिपाते हैं। शिष्यगण उसे एक मुसीबत की जड़ स्वरूप देखते हैं और स्वयं यीशु भी उसके निवेदन की अनदेखी करते हैं। वास्तव में प्रभु उस प्रांत में गए, जैसे कि वे दूसरे समय में प्रार्थना करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज करते थे और अपने शिष्यों को निर्देश देते थे। उस क्षण यद्यपि आशा के परे घटना घटी, इस पर चिंतन करते हुए हम यीशु की आज्ञाकारिता को समझ सकते हैं, जिससे वे अपनी प्रेरिताएं में पूरी करते हैं, जहां वे अपने को उन बातों से प्रभावित होने देते जिन्हें वे सुनते और देखते हैं। अंततः वे उस नारी से कहते हैं, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। संत पापा ने कहा कि आज भी कलीसिया अपने आप को ईश्वर के कार्यों से आश्चर्यचकित पाती है और ख्रिस्त की शांति को सीमांतों तक ले जाती है। हम उनकी प्रेरिताई में दिव्य कृपा के पूर्वाभास को पाते हैं, जो हमारे अंतःकरण की गहराई में कार्य करती, जिससे हर मिलन में, यहाँ तक कि वे भी जो हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करते, हम अपनी आँखों और हृदयों को सतर्कता में खोलते हुए ईश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जिससे वे हमें बतलाना चाहते हैं। हम कनाने स्त्री से विनम्रता एवं दृढ़ता की बात सीखते हैं। हम उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि ईश्वर की मेज सबों के लिए बिछाई गई है और कोई भी केवल चून पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पिता के पास हर एक का अपना स्थान होता है। विश्वास की ज्योति में असमानता, अन्याय और रोड़े, जो ईश्वर के बहुत से पुत्र और पुत्रियों के सम्मान को कुचलते हैं, अपने में असहनीय होता है। अतः संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम मुश्किल दुनिया में यीशु ख्रिस्त की कलीसिया हैं, जो शांति की खोज करती है। हम माता मरियम, हमारी माता से निवेदन करें कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि उनके होठों से हम सबसे शक्तिशाली एवं अति नवीनता के भजन, ईश महिमा की घोषणा पाते हैं। यह उस व्यक्ति का भजन बनता है जो ईश्वर की आंखों से वास्तविकता को देखता है। यही कारण है कि वह आशा और करुणा के कार्य से निराश नहीं होता। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
2: et concepit de Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने फिर एक बार वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ बार बार होने वाली हिंसा को खत्म करने की अपील दोहराई। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी एक जोरदार अपील की कि दो राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो ताकि एक न्याय संगत एवं स्थायी शांति बहाल हो सके। पोप लियो यह लगातार दोहराते रहे हैं कि सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा आधारित दो राष्ट्र समाधान पौत्रभूमि में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र सही और संतुलित रास्ता है। जैसा कि महाधर्म दश गाब्रेल कच्चा ने जुलाई 2025 में यूएन को दिए एक भाषण में कहा था। उसी साल बाद में संयुक्त राष्ट्र में वैटिकन के उस समय के स्थायी पर्यवेक्षक ने वैटिकन के इस विचार को दोहराया था कि इसराइल एवं फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर के अंदर शांति एवं सुरक्षा के साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्होंने बतलाया कि असली एवं स्थायी तरक्की सिर्फ बहुपक्षीय धैर्यपूर्ण बातचीत और सबों को साथ लेकर चलने वाले सहयोग से ही हो सकती है, न कि ताकत के इस्तेमाल से। अपने देवदूत प्रार्थना के संदेश में पोप लियो ने भूमध्य सागर खेल की शुरुआत को भी याद किया जो एक बहु खेल इवेंट है जिसमें भूमध्य सागर से सटे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस साल के खेल दक्षिणी इटली के तारांतो शहर में आयोजित है। वैटिकन का आधिकारिक खेल संघ एथलेटिका वतिकाना भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा जिसमें 4 खिलाड़ी भाग लेंगे। पोप ने उम्मीद जताई कि ये खेल इस इलाके और पूरी दुनिया के लोगों के बीच शांति और भाईचारे का एक नबी के भविष्यवाणी का संकेत होगा और अंत में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का भी वादन करते हुए पोप लियो ने पोलैंड के अपर सिलेसिया इलाके में पिए क्रिसलोस के तीर्थस्थल पर महिलाओं की पारंपरिक तीर्थयात्रा में शामिल विश्वासियों का विशेष अभिवादन किया और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: या तुति वोई, आगुरो उना बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें को शनिवार 15 अगस्त की सुबह इंडोनेशिया के पूर्वी नुस्का तेंगारा इलाके में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुई तबाही के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अभी तक मरने वालों की संख्या 53 हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्लोरेंस आइलैंड के एंडे धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष पौलुस बुडी एसवीडी को भेजे गए एक टेलीग्राम में, जिस पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन के हस्ताक्षर है, संत पापा ने इस आपदा के लगातार असर झेल रहे लोगों, खासकर बेघर हुए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक एकजुटता और करीबी का भरोसा दिया। संत पापा ने कलीसिया और नागर अधिकारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे मानवीय मदद देना जारी रखे हुए हैं और बचाव के काम में लगे आपातकाल कर्मचारियों के लिए प्रार्थना की। अंत में संत पापा ने मरे हुए लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया के सुपुर्द किया और दिव्य आशीर्वाद और सामर्थ्य की दुआ की। विदित हो कि शनिवार को फ्लोरेंस आइलैंड पर 7.7 मैग्नीट्यूड का पहला जोरदार भूकंप आया और उसके बाद पूरे दिन कई झटके आए। कुछ घंटों बाद सुमात्रा आइलैंड पर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जान माल के नुकसान के अलावा भूकंपों से घरों और संरचनाओं को भी बहुत नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक भूकंप से 900 से ज्यादा घर तबाह हो गए और करीब 450 दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 5,000 लोगों को अस्थायी टेंटों में पनाह लेनी पड़ी। हजारों लोगों ने तेज झटकों के डर से रात बाहर बिताई। स्कूल, हेल्थ सेंटर और गिरजाघरों समेत कम से कम 167 पब्लिक जगहों को नुकसान पहुंचा। और संत पापा लियो 14वें ने मोंटेरी मैक्सिको में हो रहे तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले युवाओं को याद दिलाया कि हमारे जीवन का मकसद खुद को यीशु से जोड़ना है और इस तरह उनके जीवन में हिस्सा लेकर उस पवित्रता को पाना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा लियो 14वें ने 15 और 16 अगस्त को मोंटेरी मैक्सिको में होने वाले तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस के मकसद के बारे में बताया, जो उन्होंने इसके आयोजकों और प्रतिभागियों को अपना संदेश भेजा था। वाटिकन प्रेस ऑफिस ने शनिवार शाम को यह संदेश प्रकाशित किया। संत पापा ने युवाओं से मसीह के साथ चलने और मुलाकात के विषय के अनुसार पवित्रता की चाहत रखने की अपील की, जो याद दिलाता है कि मसीह हमसे खुद कहते हैं, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ हो। योहन 15:27। इस बात पर ध्यान रखते हुए संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे इन शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कितना जरूरी है कि सिर्फ ख्रीस्त के साथ मिलकर ही हम दुनिया को उन पर विश्वास करने में मदद कर सकते हैं, भले ही आप अपने आसपास हिंसा, बेपरवाही और लक्ष्य की कमी की वजह से जो परेशानियां देखते हैं उनके बावजूद भी। अंत में संत पापा ने उन्हें रुकने और चुपचाप समय बिताने के लिए कहा, ताकि वे यह समझ सकें कि सच में क्या उचित है। उन्होंने कहा, इस तरह स्वामी के साथ मिलकर आप अपने गवाह और आशा की निशानी बन पाएंगे। संत पापा लियो ने अपने संदेश के अंत में युवाओं को इस दिन खुशी खुशी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंप दिया। और यरूशलेम के लैटिन प्रादिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर 32 पिज्जा बाला फिलिस्तीन के आखिरी बचे ख्रिस्तीय गांव तैबेह का दौरा कर रहे हैं। चूंकि गांव में आने जाने पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, आपका उदाहरण जरूरी है ताकि हम इस बहुत मुश्किल हालात में भी ख्रिस्तीय आवाज बने रह सकें।
हम यहाँ हर स्तर पर पवित्र भूमि में कलीसिया की मौजूदगी बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने वेस्ट बैंक के छोटे से क्रिस्तिय गांव तैबे के दौरा के समय धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण के त्योहार पर वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तैबे में मुक्तिदाता क्रिस्त लैटिन गिरजाघर में पवित्र मिस्सा के दौरान कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने कहा, हो सकता है कि मेरे पास इंसानी और दुनियावी स्तर पर जवाब ना हो, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है कि उनमें हम यहाँ तैबेह में भी जीवन ला सकते हैं। पवित्र मिसा की शुरुआत में कार्डिनल पियर बत्तीस्ता का स्वागत करते हुए तैबेह की पल्ली पुरोहित फादर बशर ने कहा कि गांव ने उनका अपने लोगों के बीच और अपने घर में स्वागत किया है। कार्डिनल पिज्जा बाला की मौजूदगी ने समुदाय को याद दिलाया कि वे अकेले नहीं है और कलीसिया अपने बच्चों के साथ खड़ी है, अपने साथ इस देश का क्रूस और उम्मीद लेकर चलती है। कार्डिनल पिज्जा बाला ने धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण त्योहार को पुनरुत्थान का फल बताया और कहा कि माता मरिया ख्रिस्तियों को इंसानी हिसाब किताब के बजाय असलियत को दिव्य नजरों से देखना सिखाती है। कार्डिनल पिज्जा बाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि ख्रिस्तीय मौजूदगी को बनाए रखने के लिए डर, निराशा और मुश्किल हालात के असर से दिल की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन हम एक ऐसा समुदाय बने रहना चाहते हैं जो जिंदगी को जन्म दे, अपने हक, जिंदगी के हक को छोड़े बिना। इसलिए हिम्मत रखें, डरे नहीं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में रूस के नए हमलों के बारे में बताया। इस हफ्ते यूक्रेन के 13 इलाकों पर 1,550 से ज्यादा ड्रोन, करीब 1,560 निर्देशित हवाई बम और 62 मिसाइलों से हमला किया गया, जिनसे यूक्रेन के शहरों और समुदायों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। रूसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां भी पहुंच पाते हैं वे रिहायशी भवनों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिहिबा ने आबादी में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों पर चिंता जताई। अकेले जुलाई में रूस ने पूरे यूक्रेन में कम से कम 437 आम लोगों को मार डाला और 2,610 लोगों को घायल कर दिया है। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनु

0: पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ 20वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले कनान स्त्री के जीवन पर चिंतन करते हुए विनम्रता एवं दृढ़ता के सद्गुणों को बढ़ाने का संदेश दिया।
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
0: कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में पोप लियो 14वें ने कुंवारी मरियम के स्वर्गोद ग्रहण महापर्व के दूसरे दिन अर्थात वर्ष के 20वें रविवार को विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने उस दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
0: कल हमने कुंवारी मरियम का अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के संग अटूट संबंध पर चिंतन किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी व्यक्ति के शरीर एवं आत्मा की एकता को नहीं तोड़ पाई, जो अनंत जीवन है। हर रविवार यीशु का अनुसरण करने वालों के लिए इसी परिपूर्णता की याद दिलाती है। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमें नए जीवन से पोषित करता है। संत पापा ने कहा, हम आज इसे कनाने स्त्री में पाते हैं जो सुसमाचार पाठ की मुख्य पात्र हैं। यद्यपि वह चुनी हुई प्रजा में से नहीं थी और एक परदेशी भूमि में रहती थी, तथापि वह निरंतर यीशु से बात करने की चाह रखती थी। एक शिष्य की भांति वह उनका अनुसरण करती थी, मानो उसका पहले से उनके साथ एक संबंध रहा हो। शायद उनकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, फिर भी एक आश्चर्यजनक रूप में विश्वास उसके हृदय में जड़ जमा चुका था। वह अपने लिए किसी भी चीज की कामना नहीं करती है, लेकिन वह अपनी पीड़ित बेटी के लिए शांति की चाह रखती है। वह अपना विश्वास यीशु पर समर्पित करती है। वह उनमें मुक्तिदाता को पहचानती है, जो दाऊद के उत्तराधिकारी हैं। पोप ने आगे कहा कि सुसमाचार लेखक नारी के द्वारा सामना किए जाने वाले मुश्किलों को नहीं छिपाते हैं। शिष्यगण उसे एक मुसीबत की जड़ स्वरूप देखते हैं और स्वयं यीशु भी उसके निवेदन की अनदेखी करते हैं। वास्तव में प्रभु उस प्रांत में गए, जैसे कि वे दूसरे समय में प्रार्थना करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज करते थे और अपने शिष्यों को निर्देश देते थे। उस क्षण यद्यपि आशा के परे घटना घटी, इस पर चिंतन करते हुए हम यीशु की आज्ञाकारिता को समझ सकते हैं, जिससे वे अपनी प्रेरिताए में पूरी करते हैं, जहां वे अपने को उन बातों से प्रभावित होने देते जिन्हें वे सुनते और देखते हैं। अंततः वे उस नारी से कहते हैं, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। संत पापा ने कहा कि आज भी कलीसिया अपने आप को ईश्वर के कार्यों से आश्चर्यचकित पाती है और ख्रिस्त की शांति को सीमांतों तक ले जाती है। हम उनकी प्रेरिताई में दिव्य कृपा के पूर्वाभास को पाते हैं, जो हमारे अंतःकरण की गहराई में कार्य करती, जिससे हर मिलन में, यहाँ तक कि वे भी जो हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करते, हम अपनी आँखों और हृदयों को सतर्कता में खोलते हुए ईश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जिससे वे हमें बतलाना चाहते हैं। हम कनान स्त्री से विनम्रता एवं दृढ़ता की बात सीखते हैं। हम उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि ईश्वर की मेज सबों के लिए बिछाई गई है और कोई भी केवल चून पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पिता के पास हर एक का अपना स्थान होता है। विश्वास की ज्योति में असमानता, अन्याय और रोड़े, जो ईश्वर के बहुत से पुत्र और पुत्रियों के सम्मान को कुचलते हैं, अपने में असहनीय होता है। अतः संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम मुश्किल दुनिया में यीशु ख्रिस्त की कलीसिया हैं, जो शांति की खोज करती है। हम माता मरियम, हमारी माता से निवेदन करें कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि उनके होठों से हम सबसे शक्तिशाली एवं अति नवीनता के भजन ईश महिमा की घोषणा पाते हैं। यह उस व्यक्ति का भजन बनता है जो ईश्वर की आंखों से वास्तविकता को देखता है। यही कारण है कि वह आशा और करुणा के कार्य से निराश नहीं होता। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nuntiavit Mariae,
2: e concepiti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने फिर एक बार वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ बार बार होने वाली हिंसा को खत्म करने की अपील दोहराई। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी एक जोरदार अपील की कि दो राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो ताकि एक न्याय संगत एवं स्थायी शांति बहाल हो सके। पोप लियो यह लगातार दोहराते रहे हैं कि सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा आधारित दो राष्ट्र समाधान पौत्रभूमि में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र सही और संतुलित रास्ता है। जैसा कि महाधर्मदर्श गैब्रियल कच्चा ने जुलाई 2025 में यूएन को दिए एक भाषण में कहा था। उसी साल बाद में संयुक्त राष्ट्र में वैटिकन के उस समय के स्थायी पर्यवेक्षक ने वैटिकन के इस विचार को दोहराया था कि इसराइल एवं फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर के अंदर शांति एवं सुरक्षा के साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्होंने बतलाया कि असली एवं स्थायी तरक्की सिर्फ बहुपक्षीय धैर्यपूर्ण बातचीत और सबों को साथ लेकर चलने वाले सहयोग से ही हो सकती है, न कि ताकत के इस्तेमाल से। अपने देवदूत प्रार्थना के संदेश में पोप लियो ने भूमध्य सागर खेल की शुरुआत को भी याद किया जो एक बहु खेल इवेंट है जिसमें भूमध्य सागर से सटे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस साल के खेल दक्षिणी इटली के तारांतो शहर में आयोजित है। वैटिकन का आधिकारिक खेल संघ एथलेटिका वतिकाना भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा जिसमें 4 खिलाड़ी भाग लेंगे। पोप ने उम्मीद जताई कि ये खेल इस इलाके और पूरी दुनिया के लोगों के बीच शांति और भाईचारे का एक नबी के भविष्यवाणी का संकेत होगा और अंत में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का भी वादन करते हुए पोप लियो ने पोलैंड के अपर सिलेसिया इलाके में पिए क्रिसलोस के तीर्थस्थल पर महिलाओं की पारंपरिक तीर्थयात्रा में शामिल विश्वासियों का विशेष अभिवादन किया और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: या तुति वोई, आगुरो उना बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें को शनिवार 15 अगस्त की सुबह इंडोनेशिया के पूर्वी नुस्का तेंगारा इलाके में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुई तबाही के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अभी तक मरने वालों की संख्या 53 हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्लोरेंस आइलैंड के एंडे धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष पौलुस बुडी SVD को भेजे गए एक टेलीग्राम में, जिस पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन के हस्ताक्षर हैं, संत पापा ने इस आपदा के लगातार असर झेल रहे लोगों, खासकर बेघर हुए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक एकजुटता और करीबी का भरोसा दिया। संत पापा ने कलीसिया और नागर अधिकारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे मानवीय मदद देना जारी रखे हुए हैं और बचाव के काम में लगे आपातकाल कर्मचारियों के लिए प्रार्थना की। अंत में संत पापा ने मरे हुए लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया के सिपुर्द किया और दिव्य आशीर्वाद और सामर्थ्य की दुआ की। विदित हो कि शनिवार को फ्लोरेंस आइलैंड पर 7.7 मैग्नीट्यूड का पहला जोरदार भूकंप आया और उसके बाद पूरे दिन कई झटके आए। कुछ घंटों बाद सुमात्रा आइलैंड पर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जान माल के नुकसान के अलावा भूकंपों से घरों और संरचनाओं को भी बहुत नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक भूकंप से 900 से ज्यादा घर तबाह हो गए और करीब 450 दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 5,000 लोगों को अस्थायी टेंटों में पनाह लेनी पड़ी। हजारों लोगों ने तेज झटकों के डर से रात बाहर बिताई। स्कूल, हेल्थ सेंटर और गिरजाघरों समेत कम से कम 167 पब्लिक जगहों को नुकसान पहुंचा। और संत पापा लियो 14वें ने मोंटेरी मैक्सिको में हो रहे तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले युवाओं को याद दिलाया कि हमारे जीवन का मकसद खुद को यीशु से जोड़ना है और इस तरह उनके जीवन में हिस्सा लेकर उस पवित्रता को पाना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा लियो 14वें ने 15 और 16 अगस्त को मोंटेरी मैक्सिको में होने वाले तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस के मकसद के बारे में बताया, जो उन्होंने इसके आयोजकों और प्रतिभागियों को अपना संदेश भेजा था। वाटिकन प्रेस ऑफिस ने शनिवार शाम को यह संदेश प्रकाशित किया। संत पापा ने युवाओं से मसीह के साथ चलने और मुलाकात के विषय के अनुसार पवित्रता की चाहत रखने की अपील की, जो याद दिलाता है कि मसीह हमसे खुद कहते हैं, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ हो। यूहन्ना 15:27। इस बात पर ध्यान रखते हुए संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे इन शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कितना जरूरी है कि सिर्फ ख्रीस्त के साथ मिलकर ही हम दुनिया को उन पर विश्वास करने में मदद कर सकते हैं, भले ही आप अपने आसपास हिंसा, बेपरवाही और लक्ष्य की कमी की वजह से जो परेशानियां देखते हैं उनके बावजूद भी। अंत में संत पापा ने उन्हें रुकने और चुपचाप समय बिताने के लिए कहा, ताकि वे यह समझ सकें कि सच में क्या उचित है। उन्होंने कहा, इस तरह स्वामी के साथ मिलकर आप अपने गवाह और आशा की निशानी बन पाएंगे। संत पापा लियो ने अपने संदेश के अंत में युवाओं को इस दिन खुशी खुशी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंप दिया। और यरूशलेम के लैटिन प्रादिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर 32 पिज्जाबाला फिलिस्तीन के आखिरी बचे ख्रिस्तीय गांव तैबेह का दौरा कर रहे हैं। चूंकि गांव में आने जाने पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, आपका उदाहरण जरूरी है ताकि हम इस बहुत मुश्किल हालात में भी ख्रिस्तीय आवाज बने रह सकें।
हम यहाँ हर स्तर पर पवित्र भूमि में कलीसिया की मौजूदगी बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने वेस्ट बैंक के छोटे से क्रिस्तिय गांव तैबे के दौरा के समय धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण के त्योहार पर वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तैबेह में मुक्तिदाता क्रिस्त लैटिन गिरजाघर में पवित्र मिसा के दौरान कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने कहा, हो सकता है कि मेरे पास इंसानी और दुनियावी स्तर पर जवाब ना हो, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है कि उनमें हम यहाँ तैबेह में भी जीवन ला सकते हैं। पवित्र मिसा की शुरुआत में कार्डिनल पियर बत्तीस्ता का स्वागत करते हुए तैबेह की पल्ली पुरोहित फादर बशर ने कहा कि गांव ने उनका अपने लोगों के बीच और अपने घर में स्वागत किया है। कार्डिनल पिज्जा बाला की मौजूदगी ने समुदाय को याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और कलीसिया अपने बच्चों के साथ खड़ी है, अपने साथ इस देश का क्रूस और उम्मीद लेकर चलती है। कार्डिनल पिज्जाबाला ने धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण त्योहार को पुनरुत्थान का फल बताया और कहा कि माता मरिया ख्रिस्तियों को इंसानी हिसाब किताब के बजाय असलियत को दिव्य नजरों से देखना सिखाती है। कार्डिनल पिज्जाबाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि ख्रिस्तीय मौजूदगी को बनाए रखने के लिए डर, निराशा और मुश्किल हालात के असर से दिल की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन हम एक ऐसा समुदाय बने रहना चाहते हैं जो जिंदगी को जन्म दे, अपने हक, जिंदगी के हक को छोड़े बिना। इसलिए हिम्मत रखें, डरे नहीं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में रूस के नए हमलों के बारे में बताया। इस हफ्ते यूक्रेन के 13 इलाकों पर 1,550 से ज्यादा ड्रोन, करीब 1,560 निर्देशित हवाई बम और 62 मिसाइलों से हमला किया गया, जिनसे यूक्रेन के शहरों और समुदायों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें थी। रूसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां भी पहुंच पाते हैं वे रिहायशी भवनों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिहिबा ने आबादी में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों पर चिंता जताई। अकेले जुलाई में रूस ने पूरे यूक्रेन में कम से कम 437 आम लोगों को मार डाला और 2,610 लोगों को घायल कर दिया है। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा कर रहे हैं। संत पापालियो चौदवे का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, सामाजिक सिद्धांत एक साझा

कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छाटवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलीसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलीसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसके स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ के खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, जो बातें कही गई हैं, उसके प्रकाश में कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा सही जान पड़ती है। यह सिद्धांतों और नियमों की पुस्तिका नहीं है जिन्हें हमें लागू करने की जरूरत है, बल्कि वे हमारे लिए आत्म परख के माध्यम से साझा की गई प्रक्रियाएं हैं। इसकी उत्पत्ति सुसमाचार के अनंत सत्य और इतिहास के सवालों के मध्य मिलन से हुई है। यह वर्तमान समय की निशानियों से चुनौती लेती है और विज्ञान की खोजों, संस्कृतियों और मानवीय अनुभव से अपने को पोषित करती है। इसलिए जब हमारे भाई बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचती है, जब राजनीति मानवीय त्रासदियों का उल्लेख नहीं करती है, जब अर्थव्यवस्था मानव के विरुद्ध हो जाती है या विज्ञान अपनी हस्ती से परे जाती है, तो कलीसिया को चाहिए कि वह ख्रिस्तीय धर्मावलंबियों के साथ मिलकर और दूसरे धर्मों के संग अपनी आवाज को बुलंद करे, अधिकार जताने के उद्देश्य से नहीं बल्कि एकता को प्रोत्साहित करने हेतु। सामाजिक धर्म शिक्षा की यह समझ इतिहास में एकता का ईश शास्त्र बनता है। एक इतिहास जिसमें शब्द ने शरीर धारण किया, जो वार्ता, यादों और भविष्यवाणियों के माध्यम हमारे बीच में निवास करना जारी रखता है। श्रोताओं, इतिहास में कलीसिया की उपस्थिति की रूपरेखा तैयार करने के बाद, जहां वह अपने को वार्ता के माध्यम दुनिया में प्रस्तुत करती है, संत पापा लियो कहते हैं कि मैं अब सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांतों के विकास के संबंध में विचार करना चाहूंगा, जिसने 19वीं सदी से अब तक एक वृहद सामाजिक परिवर्तन का प्रत्युत्तर दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं इसके समृद्ध शिक्षा के संबंध में न्याय नहीं कर सकूंगा, जिसका मूलभूत सार कलीसिया के सामाजिक धर्म शिक्षा में प्रस्तुत की गई है और जिसका उल्लेख वर्तमान समय में धर्म सिद्धांतों की शिक्षा में की गई है। न ही मैं व्यवस्थित रूप में हर चीज के बारे में कह सकता हूँ जो मेरे पूर्ववर्ती आराध्य अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से लौदातो सी और फ्रतेल्ली तुत्ती में व्यक्त किए गए हैं। इसके बावजूद मैं कुछ विशेष बातों पर जोर देना चाहूंगा जो इस बात की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है कि कैसे वर्तमान परिस्थिति में परंपरा की बातें निरंतर बनी रहती हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस परंपरा के अंदर मानव और समाज के संबंध में कभी न बदलने वाले सार पुराने परिस्थितियों को सुनने और समकालीन मुद्दों पर जवाब देने की नई योग्यता के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। अब मैं विकास के कुछ विशेष स्तरों के बारे में जिक्र करूंगा जो विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नोवारुम के शुरुआती काल से शुरू हुआ था। श्रोताओं, संत पापा लियो अपने विश्व प्रेरितिक पत्र में लिखते हैं कि हम अभी जिसे कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा कहते हैं, अपने में स्वतः आधुनिक युग की एक उपज नहीं है, बल्कि यह समाज के जीवन में कलीसियाई परंपराओं से संबंधित एक लंबा चिंतन का फल है, जिसे हमने ग्रहण करते हुए आकार दिया है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ
कलिस

के आचार्यों और ईश शास्त्रीय तथा मध्यकालीन और आधुनिक युग के वैधानिक विकास पर आधारित है। यद्यपि कलीसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापा लियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नवारुम से शुरू हुई। अपने समय की नई चीजों का सामना करते हुए पूंजी और रोजगार के मध्य संघर्ष, कार्य क्षमता पर सवाल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, संत पापा लियो 13वें ने अपने को सिर्फ उथल पुथल को स्वीकारने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को कलीसिया की प्रेरिताई हेतु एक क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें गहरी आत्मपरक हेतु खोला और सुसमाचार के प्रकाश में उनके कारणों और संभावित समाधानों को समझाया तथा ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए मानव को संपूर्ण दृष्टिकोण से समझने हेतु मदद की। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस कार्य को सामाजिक धर्म सिद्धांत की एक लंबी शिक्षा स्वरूप देखा, एक अनुकरणीय अभ्यास की भांति, जिसके द्वारा कलीसिया जब ऐतिहासिक परिवर्तनों का सामना करने की स्थिति में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सच्चाई की जांच पड़ताल करती, उन्हें घोषित करती और उनके समाधान हेतु मार्गों की ओर इंगित कराती है। इस भांति विश्वास में हमेशा रहने वाली बातें और कलीसिया की पुरानी ज्ञान की बातों को हम एक सजीव सिद्धांत में प्रकट होता पाते हैं, जो सुसमाचार के प्रति उन परिस्थितियों में भी निष्ठावान बनी रहती है जब उन्हें हर युग की नई चीजों का प्रत्युत्तर देना पड़ता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवे ने कहा है कि वे जिम्बाब्वे के करीबा जेल में नौका हादसा के शिकार लोगों के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं और पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 11 अगस्त को करीबा झील में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे की करीबा झील में ओवरलोडेड नौका के पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन इसमें करीब 150 लोग सवार थे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक ताज संदेश में पोप लियो चौदहवें ने हादसा के शिकार लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे मृतकों की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्डिनल परोलिन ने लिखा, पोप लियो चौदहवें को करीबा झील में हुए जानलेवा नाव हादसा के बारे जानकर बहुत दुख हुआ। वे मरने वालों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए उन लोगों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं जो उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। साथ ही कार्डिनल ने लिखा कि इस दुखद घटना पर लगातार काम करने वाले सिविल अधिकारियों और आपातकालीन कर्मचारियों के लिए भी पोप प्रार्थना करते हैं तथा इस हादसा से प्रभावित सभी लोगों पर सांत्वना, चंगाई और बल के ईश्वरीय आशीर्वाद की याचना करते हैं। इस बीच हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच कार्य जारी है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव 41 साल पुरानी थी और झील को तेज हवाओं के बीच पार की। नाव देश के उत्तर पश्चिम में कई ग्रामीण एवं मछली पकड़ने वाले समुदायों की ओर जा रही थी। यह एक ऐसा इलाका है जहां सड़कें खराब हालत में हैं और आवागमन के साधन कम हैं। हादसे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगुआ ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और प्रभावित परिवारों को मेडिकल एवं मनोवैज्ञानिक मदद देने का वादा किया है, जिन्होंने 13 अगस्त को करीबा स्टेडियम में अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक करीबा झील जाम्बिया की सीमा पर स्थित है और इस इलाके के ग्रामीण समुदायों और मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रास्ता है। 1950 के दशक के अंतिम और 1960 के दशक की शुरुआत के बीच जम्बेजी नदी पर एक डैम बनाकर बनाई गई यह झील 200 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है। संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर कार्डिनल परोलिन ने विश्वासियों को दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 17 अगस्त को समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया। सन 1126 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल से पौत्र अवशेष की वापसी कतानिया में हुई थी। अपने संरक्षक संत के प्रति एक प्राचीन भक्ति के लिए जब विश्वासी एक साथ एकत्रित हुए तो कार्डिनल परोलिन सिसली की इस प्यारी धरती पर पोप का आशीर्वाद एवं स्नेह लेकर आए, जबकि पोप लियो चौदहवें आध्यात्मिक रूप से इस खुशी में शामिल हुए। कार्डिनल ने जयंती मिसा समारोह का अनुष्ठान करते हुए अपने उपदेश में कहा कि इस वर्षगांठ को मनाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इन शताब्दियों में प्रभु अपनी कलीसिया के प्रति निष्ठावान रहे, परीक्षा की घड़ी इससे बल प्रदान किया एवं कठिनाइयों में इसे शुद्ध किया और संतों के साक्ष्य के द्वारा इससे बढ़ने में मदद दी। अपने प्रवचन में कार्डिनल ने जोरदार अपील की कि हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हमारे उन सभी भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सह रहे हैं। पौत्र मिसा के बाद ऐतिहासिक सिटी सेंटर की कुछ मुख्य सड़कों पर संत के पावन अवशेषों के साथ एक जुलूस निकाला गया। कार्डिनल परोलिन ने आगे कहा, संत अगाथा सिर्फ कतानिया के इतिहास से जुड़ी नहीं हैं, वे आज भी ईश्वर की हैं और अपने लोगों के साथ चलती हैं। संत अगस्टीन एवं तर्तुलियन का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीदों की अहमियत को याद किया, जिनकी प्रशंसा उनके दुख की वजह से नहीं बल्कि इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वे डटे रहे, जैसा कि हिप्पो के संत ने सिखाया था।
शहीदों का खून हार की निशानी नहीं बल्कि वह बीज है जिससे कलीसिया लगातार नए सिरे से फलती और फूलती है। इसलिए पोप के विशेष दूत कार्डिनल परोली ने अगाथा को एक ऐसी महिला के रूप में देखने का निमंत्रण दिया जो आज विश्वास जगा सकती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी पवित्रता की मिसाल हैं जिन्हें यादों के संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता बल्कि वह विश्वास, आशा और उदारता उत्पन्न कर सकती है। कार्डिनल परोली ने पौत्र मिसा में कहा, जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है तब भी ईश्वर निष्ठावान रहते हैं। पौत्र मिसा में सात मकाबी भाइयों और उनकी मां के शहादत की कहानी और प्रेरित संत पौलुस के पत्र पर चिंतन करते हुए कार्डिनल परोली ने इस बात पर जोर दिया कि ख्रिस्त से जुड़े रहना हर तरह के समझौते के लालच से बढ़कर है, जो अगाथा में स्पष्ट है। कार्डिनल परोली ने दुनिया के कई हिस्सों में सताए जा रहे ख्रिस्तों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इसलिए आइए हम इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले अपने उन सभी भाइयों और बहनों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सहते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बिना खून के भी शहादत है जिसके लिए हमें भी बुलाया गया है। इसलिए कार्डिनल ने बतलाया कि मसीह के लिए बिना शर्त प्यार दिखाने के दो तरीके हैं, खून की शहादत और शायद कम दिखने वाली शहादत जिससे हर इंसान अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकता है, प्रतिदिन की वफादारी की शहादत। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन जीवन साथियों का जिक्र किया जो कठिनाइयों के बीच भी अपना प्यार बरकरार रखते हैं। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में पोप की वाटिका, जिसे मध्य युग में पोप निकोलस तृतीय और सीने ने बनवाया था, 100% जैविक बन गई है क्योंकि इसे पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी में बताए गए सृष्टि की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में सब्जी बाग पूरी तरह से जैविक बन रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा कर रहे हैं। संत पापालियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, सामाजिक सिद्धांत एक साझा आत्म परीक्षण की चर्चा करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सत्य के लिए खुलापन कलिसिया की ख्रिस्तियता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबोती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है कि ख्रिस्तियता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छठवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसके स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ के खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, जो बातें कही गई हैं, उसके प्रकाश में कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा सही जान पड़ती है। यह सिद्धांतों और नियमों की पुस्तिका नहीं है जिन्हें हमें लागू करने की जरूरत है, बल्कि वे हमारे लिए आत्म परख के माध्यम से साझा की गई प्रक्रियाएं हैं। इसकी उत्पत्ति सुसमाचार के अनंत सत्य और इतिहास के सवालों के मध्य मिलन से हुई है। यह वर्तमान समय की निशानियों से चुनौती लेती है और विज्ञान की खोजों, संस्कृतियों और मानवीय अनुभव से अपने को पोषित करती है। इसलिए जब हमारे भाई बहनों के सम्मान को क्षति पहुंचती है, जब राजनीति मानवीय त्रासदियों का उल्लेख नहीं करती है, जब अर्थव्यवस्था मानव के विरुद्ध हो जाती है या विज्ञान अपनी हस्ती से परे जाती है, तो कलिसिया को चाहिए कि वह ख्रिस्तीय धर्मावलंबियों के साथ मिलकर और दूसरे धर्मों के संग अपनी आवाज को बुलंद करे, अधिकार जताने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एकता को प्रोत्साहित करने हेतु। सामाजिक धर्म शिक्षा की यह समझ इतिहास में एकता का ईश शास्त्र बनता है। एक इतिहास जिसमें शब्द ने शरीर धारण किया, जो वार्ता, यादों और भविष्यवाणियों के माध्यम हमारे बीच में निवास करना जारी रखता है। श्रोताओं, इतिहास में कलिसिया की उपस्थिति की रूपरेखा तैयार करने के बाद जहां वह अपने को वार्ता के माध्यम दुनिया में प्रस्तुत करती है, संत पापा लियो कहते हैं कि मैं अब सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांतों के विकास के संबंध में विचार करना चाहूंगा, जिसने 19वीं सदी से अब तक एक वृहद सामाजिक परिवर्तन का प्रत्युत्तर दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं इसके समृद्ध शिक्षा के संबंध में न्याय नहीं कर सकूंगा, जिसका मूलभूत सार कलिसिया के सामाजिक धर्म शिक्षा में प्रस्तुत की गई है और जिसका उल्लेख वर्तमान समय में धर्म सिद्धांतों की शिक्षा में की गई है। ना ही मैं व्यवस्थित रूप में हर चीज के बारे में कह सकता हूँ जो मेरे पूर्ववर्ती आराध्य अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से लौदातो सी और फ्रतेल्ली तुत्ती में व्यक्त किए गए हैं। इसके बावजूद मैं कुछ विशेष बातों पर जोर देना चाहूंगा जो इस बात की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है कि कैसे वर्तमान परिस्थिति में परंपरा की बातें निरंतर बनी रहती हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस परंपरा के अंदर मानव और समाज के संबंध में कभी न बदलने वाले सार पुराने परिस्थितियों को सुनने और समकालीन मुद्दों पर जवाब देने की नई योग्यता के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। अब मैं विकास के कुछ विशेष स्तरों के बारे में जिक्र करूंगा जो विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नोवारुम के शुरुआती काल से शुरू हुआ था। श्रोताओं, संत पापा लियो अपने विश्व प्रेरितिक पत्र में लिखते हैं कि हम अभी जिसे कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा कहते हैं अपने में स्वतः आधुनिक युग की एक उपज नहीं है, बल्कि यह समाज के जीवन में कलिसियाई परंपराओं से संबंधित एक लंबा चिंतन का फल है जिसे हमने ग्रहण करते हुए आकार दिया है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ कलिसिया के आचार्यों और ईश शास्त्रीय तथा मध्यकालीन और आधुनिक युग के वैधानिक विकास पर आधारित है। यद्यपि कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत इस अभिव्यक्ति की मुहर संत पापा पियूस 12वें द्वारा 1950 में लगाई गई, जबकि इसकी विषय वस्तुओं के ढांचे का स्वरूप सामाजिक शिक्षा के शरीर स्वरूप संत पापा लियो 13वें के द्वारा विश्व प्रेरितिक पत्र रेरुम नवारुम से शुरू हुई। अपने समय की नई चीजों का सामना करते हुए पूंजी और रोजगार के मध्य संघर्ष, कार्य क्षमता पर सवाल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, संत पापा लियो 13वें ने अपने को सिर्फ उथल पुथल को स्वीकारने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को कलिसिया की प्रेरिताई हेतु एक क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें गहरी आत्मपरक हेतु खोला और सुसमाचार के प्रकाश में उनके कारणों और संभावित समाधानों को समझाया तथा ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए मानव को संपूर्ण दृष्टिकोण से समझने हेतु मदद की। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस कार्य को सामाजिक धर्म सिद्धांत की एक लंबी शिक्षा स्वरूप देखा, एक अनुकरणीय अभ्यास की भांति जिसके द्वारा कलिसिया जब ऐतिहासिक परिवर्तनों का सामना करने की स्थिति में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सच्चाई की जांच पड़ताल करती, उन्हें घोषित करती और उनके समाधान हेतु मार्गों की ओर इंगित कराती है। इस भांति विश्वास में हमेशा रहने वाली बातें और कलिसिया की पुरानी ज्ञान की बातों को हम एक सजीव सिद्धांत में प्रकट होता पाते हैं, जो सुसमाचार के प्रति उन परिस्थितियों में भी निष्ठावान बनी रहती है जब उन्हें हर युग की नई चीजों का प्रत्युत्तर देना पड़ता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनें। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवे ने कहा है कि वे जिम्बाब्वे के करीबा जेल में नौका हादसा के शिकार लोगों के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं और पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 11 अगस्त को करीबा झील में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे की करीबा झील में ओवरलोडेड नौका के पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन इसमें करीब 150 लोग सवार थे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक ताज संदेश में पोप लियो चौदहवें ने हादसा के शिकार लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे मृतकों की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्डिनल परोलिन ने लिखा, पोप लियो चौदहवें को करीबा झील में हुए जानलेवा नाव हादसा के बारे जानकर बहुत दुख हुआ। वे मरने वालों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए उन लोगों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं जो उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। साथ ही कार्डिनल ने लिखा कि इस दुखद घटना पर लगातार काम करने वाले सिविल अधिकारियों और आपातकालीन कर्मचारियों के लिए भी पोप प्रार्थना करते हैं तथा इस हादसा से प्रभावित सभी लोगों पर सांत्वना, चंगाई और बल के ईश्वरीय आशीर्वाद की याचना करते हैं। इस बीच हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच कार्य जारी है। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव 41 साल पुरानी थी और झील को तेज हवाओं के बीच पार की। नाव देश के उत्तर पश्चिम में कई ग्रामीण एवं मछली पकड़ने वाले समुदायों की ओर जा रही थी। यह एक ऐसा इलाका है जहां सड़कें खराब हालत में हैं और आवागमन के साधन कम हैं। हादसे के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगुआ ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है और प्रभावित परिवारों को मेडिकल एवं मनोवैज्ञानिक मदद देने का वादा किया है, जिन्होंने 13 अगस्त को करीबा स्टेडियम में अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक करीबा झील जाम्बिया की सीमा पर स्थित है और इस इलाके के ग्रामीण समुदायों और मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रास्ता है। 1950 के दशक के अंतिम और 1960 के दशक की शुरुआत के बीच जम्बेजी नदी पर एक डैम बनाकर बनाई गई यह झील 200 किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई है। संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर कार्डिनल परोलिन ने विश्वासियों को दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने संत अगाथा के पौत्र अवशेष की कतानिया वापसी की 900वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 17 अगस्त को समारोही ख्रिस्त्याग अर्पित किया। सन 1126 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल से पौत्र अवशेष की वापसी कतानिया में हुई थी। अपने संरक्षक संत के प्रति एक प्राचीन भक्ति के लिए जब विश्वासी एक साथ एकत्रित हुए तो कार्डिनल परोलिन सिसली की इस प्यारी धरती पर पोप का आशीर्वाद एवं स्नेह लेकर आए, जबकि पोप लियो चौदहवें आध्यात्मिक रूप से इस खुशी में शामिल हुए। कार्डिनल ने जयंती मिसा समारोह का अनुष्ठान करते हुए अपने उपदेश में कहा कि इस वर्षगांठ को मनाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इन शताब्दियों में प्रभु अपनी कलीसिया के प्रति निष्ठावान रहे, परीक्षा की घड़ी इससे बल प्रदान किया एवं कठिनाइयों में इसे शुद्ध किया और संतों के साक्ष्य के द्वारा इसे बढ़ने में मदद दी। अपने प्रवचन में कार्डिनल ने जोरदार अपील की कि हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हमारे उन सभी भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सह रहे हैं। पौत्र मिसा के बाद ऐतिहासिक सिटी सेंटर की कुछ मुख्य सड़कों पर संत के पावन अवशेषों के साथ एक जुलूस निकाला गया। कार्डिनल परोलिन ने आगे कहा, संत अगाथा सिर्फ कतानिया के इतिहास से जुड़ी नहीं हैं, वे आज भी ईश्वर की हैं और अपने लोगों के साथ चलती हैं। संत अगस्टीन एवं तर्तुलियन का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीदों की अहमियत को याद किया, जिनकी प्रशंसा उनके दुख की वजह से नहीं बल्कि इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वे डटे रहे, जैसा कि हिप्पो के संत ने सिखाया था।
शहीदों का खून हार की निशानी नहीं, बल्कि वह बीज है जिससे कलीसिया लगातार नए सिरे से फलती और फूलती है। इसलिए पोप के विशेष दूत कार्डिनल परोली ने अगाथा को एक ऐसी महिला के रूप में देखने का निमंत्रण दिया जो आज विश्वास जगा सकती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी पवित्रता की मिसाल हैं जिन्हें यादों के संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता, बल्कि वह विश्वास, आशा और उदारता उत्पन्न कर सकती है। कार्डिनल परोली ने पौत्र मिसा में कहा, जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है तब भी ईश्वर निष्ठावान रहते हैं। पौत्र मिसा में सात मकाबी भाइयों और उनकी मां के शहादत की कहानी और प्रेरित संत पौलुस के पत्र पर चिंतन करते हुए कार्डिनल परोली ने इस बात पर जोर दिया कि ख्रिस्त से जुड़े रहना हर तरह के समझौते के लालच से बढ़कर है, जो अगाथा में स्पष्ट है। कार्डिनल परोली ने दुनिया के कई हिस्सों में सताए जा रहे ख्रिस्तों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इसलिए आइए हम इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले अपने उन सभी भाइयों और बहनों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम और उनके सुसमाचार के लिए अत्याचार सहते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बिना खून के भी शहादत है जिसके लिए हमें भी बुलाया गया है। इसलिए कार्डिनल ने बतलाया कि मसीह के लिए बिना शर्त प्यार दिखाने के दो तरीके हैं, खून की शहादत और शायद कम दिखने वाली शहादत जिससे हर इंसान अपने दैनिक जीवन में महसूस कर सकता है, प्रतिदिन की वफादारी की शहादत। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन जीवन साथियों का जिक्र किया जो कठिनाइयों के बीच भी अपना प्यार बरकरार रखते हैं। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में पोप की वाटिका, जिसे मध्य युग में पोप निकोलस तृतीय और सीने ने बनवाया था, 100% जैविक बन गई है, क्योंकि इसे पोप फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी में बताए गए सृष्टि की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। वैटिकन उद्यान में मातर एक्लेसिया मठ के बगल में सब्जी बाग पूरी तरह से जैविक बन रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।